यार क्या बात है ना मुंडिया की, भी बड़ा खूबसूरत गाँव रंगले सरदार, क्या कमाल है यार, कमाल इन्हों की भी गायकी ना मुंडिया की। एक देखो पगां बड़िया खूबसूरत, चेहरे बड़े खूबसूरत, जिदा रंगले सरदार जिदा का नाम उदा दे फब्बत भी बड़ी सोहनी आ, बड़ी आवाज़ अकाल पुरख ने बड़ी वधिया आवाज़ दी इन्हों। जिदा सभ्याचार की गल करिए सोहना गाँवते ने, सुचज्जा गाँवते ने, साफ सुथरा गाँवते ने, है कमाल यार। तो नाल दी नाल मल्ली टेंट सर्विस वाले का थोड़ा सुनेहा दे दी जी, आउटडोर ईवेंट्स के लिए मल्ली टेंट सर्विस में तुम याद रखना, आउटडोर के घेंट घेंट टेंट लाने हैं, ज़्यादातर तुम मल्ली टेंट सर्विस के ही टेंट वेखे होने हैं। सो जाने पहचाने नाम आ मल्ली टेंट सर्विस, 6479992569, 647-999-2569, 6479992569।

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट। यहाँ पहुँचो 10,970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस, पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम। ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विथ चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट ओपन 24/7।
3: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਕੂਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵਾਨਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸਪਾ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ 100% ਹਾਈਜੀਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਨੇਟਲ, ਗਲੋਇੰਗ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, लेजर हेयर रिमूवल अते बॉडी कॉन्टोरिंग। अते हाँ, इंश्योरेंस बेनिफिट्स वाले ग्राहकां लई डायरेक्ट बिलिंग दी खास सुविधा भी उपलब्ध है। ता देर किस गल दी, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। पता 534 पार्कहर्स्ट स्क्वायर, ब्रैम्पटन। फोन नंबर 416-811-5385। लिवाना वेलनेस स्पा, जो रखे तुहाडी सेहत अते

ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी, ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी, ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी, आओ इस दी शान वधाइए, एदे सोले रल में लगाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिदा है, बंदा जदों बोले ता पछाण होना चाहिदा है, अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दियो, वेखे पंजाबी ना भुला दियो, वेखे

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: कस्टमर बनना चाहते हो, नो बफरिंग, नो फ्रीजिंग, 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ। तुसी ढिल्लों वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिल्लों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लेके जान वास्ते बेस्ट गिफ्ट, जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, नितनेम दिया सारिया बाणिया ने, ढाडी वारा ने, 300 शब्द ने, 110-220 दा चार्जर अते एयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी, टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिल्लों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो। IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिल्लों वीडियो गुरबाणी रेडियो, गो रोड एबनीजर, 7 दिन खुले ने, 11 to 8, 905-204-1313, 905-204-1313। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
0: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दी बनी कोई गल?
1: ओए शम्मी पठल होरां नाल हो गई गल, कार लेके देण तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडियां लोड़ां मुताबक वधिया लोकेशंस ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763।

0: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करा
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पोंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
0: इत्थे बी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
0: 905-459-5533
1: 905-459-5533 ते
0: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
3: टीम फॉर एंटरटेनमेंट पेश कर दे दे पंजाबी विरसा 2026
4: ओए सावण चढ़िया ती
3: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो
4: दुनिया मेले जानती
3: है थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो मनमोहन वारिस कमल हीर अते संत

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap।

0: खास खूबसूरत लोग खूबसूरत मकान सी चलो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी रही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। एक जो ग्रे स्काइज के नाल अज की ड्रिजलिंग हल्की बूंदाबांदी के नाल खूबसूरत जहा वैदर अज के खूबसूरत सवेर न रंगत लिया चुका है। 9-18 स्टूडियोज घड़ियों के उत्ते 21 तारीख हो गई है सत्तवें महीने की। कुछ खबर जिन्हों डोनल्ड ट्रंप ने जोड़ा है 50% टैरफ की एक नवी लिस्ट जारी की है 15 पेज की। ये कैनेडा टारगेट किया है तो बदला लेना है या मौकरी हुई है जिहड़ी वर्ल्ड कप दे विच दा मजाक उड़ाया गया स्टेज दे उपर वो मीडिया विच टेंशन दे विच है उस तो ध्यान हटाना या जिहड़ा हैगा कोई भी होर रीज़न हो सकता इस आदमी का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA की जजमेंट तो बाद फिर ये आदमी जिहड़ा हैगा एक बार मिसयूज ऑफ पावर करता होया जिहड़ा हैगा टैरिफ्स कैनेडा दे उत्ते ला रहा हैगा। तो उधर प्रीमियर्स वालों अलग अलग जिथे स्टेटमेंट्स ने ते प्राइम मिनिस्टर कारनी वालों स्टेटमेंट है कि यह उलंघन किया गया है एक कानून जाबते का एक एग्रीमेंट का उसनों ब्रीच किया जा रहा है जिस के उपर कैनेडा अपना प्रतिक्रम तैयार कर रहा है कि करना चाहिए। सारे प्रीमियर्स जिहड़े प्रेरीज दे विच इकट्ठे हुए हैं तो लैट सी ऊंट किस करबट बैठता है, यानी कि कोई पैनिक होने वाली गल नहीं है। लैट सी कि अगले स्टैप कैनेडा दे की रहेंगे। UK ट्रंप दे कोल कांग्रेस दे विच पावर जिहड़ी आ अक्टूबर तक जिहड़ी आ हुण फुल हैगी है। जिस तरह दे लक्षण ने उहदे ते जिस तरह दा अमेरिका दा हालात कीते होए ने इस आदमी ने, मैं बड़ा हैरान हाँ कि इत्थे जिहड़े चोरियां करन वाले लोग मैं देखे ने कई जिन्हां ते चार्जस सी चोरी दे वो ट्रंप दे सपोर्टर सी कैनेडा दे विच। बीयर की बोतल फट के रोज शाम को फोटो पाते कि ट्रंप बहुत वधिया बंदा ते बहुत वधिया कर रहा है। तो कई अनपढ़ लोग मैं इस कंट्री देखे ने अपने मुल्क लिए बहुत वधिया करदा पिया, मैंने बड़ी हैरानी होंगी होंगी इस तो बड़ा अनपढ़ बंदा किहड़ा होगा जिहड़ा नॉर्थ अमेरिका वर्गी धरती ते आ गया होवे ते इहनूं इहीं ना पता होवे अपने मुल्क लिए। इस वेले अमेरिकन होटल्स, इस वेले अमेरिकन एग्रीकल्चर, इस वेले अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टोटली स्पॉयल हो चुका, खत्म हो चुका, डेड हो गया, मतलब बैंककरप्ट हो गई तीन इंडस्ट्रीज खेतीबाड़ी ते ट्रांसपोर्टेशन होटल इंडस्ट्री जिहड़ी है वह बैंककरप्ट हो चुकी है। मतलब वह अपने डे टू डे बेसिस उत्ते सरवाइव कर रही हैगी है। दूसरे पासे कुछ होर जिहड़ियां गल्लां पता खबर जिन्हां विचों बहाना सी कि थोड़ा धुआं साडे वल आ रहा है जदों कि अग की जिहड़ी तादाद है अमेरिका च साडे तो ट्रिपल हैगी है। ये धुएं दे नाल अमेरिका दे उत्ते असर पै रहा तो चलो जी थोड़े ते टैरिफ ला दिंदे हां, लैट्स सी हुण की हुंदा अगे। उधरों मैक्सीको वालों कहा गया कि कोई भी ट्रेड डील बिना कैनेडा तो असी साइन नहीं करांगे तुहाडे नाल कल्ले, अगर कैनेडा साइन करेगा तो असी करांगे, अगर कैनेडा नहीं करेगा तो असी भी नहीं करांगे। बड़ी नमोशी वाला जिहड़ा माहौल है इस हंकारी पुरश के आस पास बनया होया है। इस वेले अमेरिका इस दे उपर नहीं प्रोसीड कर रहा, अमेरिकनज नहीं कर रहे, इस समय हंकारी आदमी जिसनों ताकत दे दी है, कहते हैं जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीचना कोई। तो जदों हुण पावर आ गई है तो उत्तम नीच बंदा जिहड़ा हैगा वो अपनी नीचता दिखाउण लग गया। इधर जिहड़ी तकरीबन कई वर्ग किलोमीटर दे विच जंगल सड़ के सवाह हो चुके ने, अग जिहड़ी है कई सालां बाद जिहड़ी इन्नी भयानक रूप दे विच जिहड़ी लगी है तो आह जिहड़े बदल ने देखदे आ किन्नी क राहत पहुँचाउंदे ने। तो कुछ होर खबरां भी तुहाडे नाल असीं सांझियां करांगे। प्रीमियर डगफोर्ड दे उपर जिथे ब्रैम्पटन दे एक MPP दे उपर रौला चल रहा हैगा, NDP दी ओपोजिशन लीडर जिहड़ी आ उह कह रही है कि ब्रैम्पटन दे हरदीप ग्रेवाल ने जिहड़े उन्हां ने अपने परिवार दे विच इश्तहार दे के मिसयूज फंड दे कीते ने। होटलों के उपर गल चल रही है, प्रीमियर दे जहाज़ के उपर गल चल रही है, इस तरह नीना तांगड़ी ने जिहड़े उन्हां दे उपर गल चल रही हैगी है, इस तरह होर भी MPPs ने जिन्हां विचों टूरिज्म मिनिस्टर ऑलरेडी अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन दे चुका हैगा। डगफोर्ड नूं एक मौका मिल गया डोनल्ड ट्रंप दे टैरिफ्स दा टू मेक हिम हीरो चाहे वह कागजी होवे। तो इधरों ने बड़का मारने शुरू करते हैं, बिजली तो ला दो, हूँ ला दो बिजली तो टैक्स ला दो, वो टैक्स ला दो, शराब से टैक्स। तो डगफोर्ड अपने बचा दे जिथे बुरी तरह ना डगफोर्ड जरा मिसयूज ऑफ फंड्स के मामलों के घिरया हुआ, जिथे मैं थोड़ा क्या लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के एक एक साल तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जोकल इतने चल दियाँ तो लैके ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖੋ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ RDSP ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। $90,000 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 49 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ PR ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ $3,480 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ $2,450 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ $90,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-910-9000, 416-910-9000, ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ .ca। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ RDSP ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: बम्बा गया मैं जिते जावां मुंडे कहंदे बम्बा गया

0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਵਣ ਸਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਰ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕੰਜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਕੜੀ ਤੇ ਵਿਫਤਾ ਖੜੀ ਦੀ ਖੜੀ, ਸੋ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਬੇਸਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਾਵਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 2.8% ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 3.2 ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2.8% ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਲ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗਲਿੰਗਮ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ, ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, 2899801056, 299-801-566 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਧੇਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਮੇ, ਹਮ ਇਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਮੇ ਡੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਪਾਕਿਟ ਸੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਕੋ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 30 ਸੇ 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੋਨ, ਇਟਸ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਨ। ਲੋਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲਾਈਕ ਜਬ ਹਮੇ ਲੋਕ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, कुछ लोगों को तो पता ही होता है इसके बारे में, वो आके रेडीली रिटेन हो जाते हैं। क्यों? हमारी फीस बहुत कम, जायज फीस है हमारी। नंबर टू, जिनको नहीं पता वो भी आते हैं, देखते हैं तो लोगों का काम हुआ है, प्रॉपर ऑफिस है, कोई कुंडी नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई ग्रीडीनेस नहीं है, आके स्किल भी डेवलप करते हैं और साथ में फंडिंग भी अपने अकाउंट में। इतने लोग हासिल कर चुके, बहुत टाइम हो गया हमें इस काम में। PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आप हैं, इनकम आपकी कम है, 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि रूल्स एक हफ्ते बाद चेंज होने वाले गवर्नमेंट की तरफ से। पीछे ना रहे, फंडिंग ले, स्किल भी ले।
0: ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी उनकी बनती है, एक बार फिर से दोहरा दें जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबल है,
1: हाँ जी,
0: और वैलिड डेट भी
1: हाँ
0: बता दें ताकि हमारे जो लिसनर है वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले लें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया।
1: बिल्कुल जी। तो हम पुश नहीं कर रहे हैं, बट आपको अवेयर कर रहे हैं कि एक वीक के बाद, इस हफ्ते के बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स में बंद कर रही है। देयर इज अ मैसिव चेंज इन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो इसलिए आप इसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप पीआर हैं, सिटीजन हैं, प्रोटेक्टेड पर्सन है, ओंटारियो में किसी भी सिटी में रहते हैं, आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है। किसकी होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड, ऊबर ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, लाइक अपना कहते हैं अपना अनएम्प्लॉयड लोग है, राइट, हाउस वाइफ है। तो इन लोगों को अच्छा बेनिफिट है, ट्रक ड्राइवर, उबर ड्राइवर को मिस ना करें। फंडिंग आपके खाते में आती है सर, हमारे खाते में नहीं आती, कोई चालाकी नहीं है, इतनों को असिस्ट कर चुके हैं, तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
0: जी, ते सरां जेड़े पैसे है ये कितने भी खर्च कर सकते हैं कि सिर्फ एजुकेशन ते ही करने हैं, क्योंकि साढ़े ना रोज नवे लिसनर जुड़ते हैं ते उन्हां दी जानकारी लिए बड़ा जरूरी है ये क्वेश्चन दा आंसर।
1: हाँ जी, ये जो फंडिंग है ये आपको गवर्नमेंट डे ही लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए रही है। हर किसी के लिए लिविंग एक्सपेंसेस अलग अलग तरीके के हैं, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है, नहीं है। लोग, कुछ लोग टफ टाइम से भी गुजर रहे हैं, तो वो उसको अपनी तरीके से यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज ले रखी तो उनमें कुछ करते हैं, राइट। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे तो अपना नुकसान ही कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले सब लोग ले चुके, बताते नहीं है लोग, सिर्फ नुकसान
0: जी
1: होता है ना कहीं पर तो बताते, जब प्रॉफिट होता है तो नहीं बताते दूसरे को, अपने तक ही रखते हैं। इसलिए आप पीछे ना रहे, क्योंकि आप अपना नुकसान ही करा रहे हैं। गैस का प्राइस परसों सस्ता था तो लाइन लगी पड़ी थी दूर दूर तक, दूर दूर तक। सेविंग्स $5-10 के लिए इतना वेट करते हैं सर, यहाँ पे तो $1,000 की बात हो रही, वो भी ग्रांट्स की बात हो रही, लोन की बात नहीं हो रही, तो कॉल करें, पीछे ना रहे।
0: जी, ते सारांश किन्नी फंडिंग बन जाती है, ते डायरेक्ट क्लाइंट को ही जाती है, और एदे बारे दसो थोड़ा जा।
1: हाँ जी, फंडिंग लाइक टोटल रेंज है 30 से 100,000 डॉलर की, डिपेंड करते फंडिंग आपकी फैमिली साइज पे। जितनी आपकी फैमिली इनकम कम है, कम कम, ज्यादा नहीं, बैंक नहीं है यहाँ पे, बैंक इतने मेहरबान नहीं है आप पे, वो तो खा ही लेते बंदे को उठा के, बैंक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी इनकम जितनी कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, और जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, उतनी फंडिंग ज्यादा बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो मतलब इसमें मान के चले फैमिली ऑफ टू को, रिटायर्ड कपल है या यंग कपल है, उनको मिल जाते हैं अराउंड से $45,000, उसमें से $25,000 तो ग्रांट है जो वापस ही नहीं करना, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एंड 0%, क्योंकि बहुत आसान थी किस्तों में 1.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना है। ऑन अदर हैंड फैमिली ऑफ फाइव है, तीन बच्चे हैं आपके, छोटे मतलब छोटे मतलब छोटे बच्चों में ज्यादा फंडिंग आती है उल्टा। और यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर आपके बच्चे जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट, देने की आज ही पैदा हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बच्चे जा रहे हैं, फैमिली ऑफ फाइव, 100,000 की फंडिंग, 50,000 तो ग्रांट है जो वापिस नहीं करना, रेस्ट $50,000 0% पे ऑप्शनल लोन है, और 1.5 साल बाद भी उसका ब्याज दर 2.5% है पूरे साल का, 15 साल में लौटा सकते हैं उस $50,000 को भी, नो क्रेडिट चेक, नो कोलेटरल। और जितनी अभी कम इनकम है उतनी ज्यादा फंडिंग है, लोग शर्माते हैं कॉल करके, सर जीरो इनकम है मेरी, सर शर्मा के रहे हो, आपके लिए ही है। अब एक दिन में कितने लोगों को मना करते हैं कि भैया आपकी इनकम ज्यादा, आप एलिजिबल नहीं हो, राइट।
0: अच्छा सर, जैसे आपको कोई कॉल करे या सीधा ऑफिस में आ रहा है ना, तो वो कौन से
1: हाँ जी,
0: डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लेके आए ताकि फिर साथ के साथ आप उनका अप्लाई कर दूं ग्रांट के लिए?
1: हाँ बिल्कुल जी। ये अब ना इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हाइड एंड सीक खेले, कि आप डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल पे भेज रहे हैं, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, हमें भी चाहिए फाइल पूरी कंप्लीट करते हम, अगर आप रिटेन होना चाहते हो, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है। तो इसलिए NOA आपका, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कोई आपके मतलब अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते इसमें, कोई घर के ये वो, भूल जाएगी आप उस चीज को। और बाकी कहते हैं फंडिंग आपके खाते में आती है तो हमारे खाते में नहीं आती, और हमारी फीस कितनी है 199, काम होने के बाद आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से हमें देनी है सर, आपके खाते में फंडिंग आ रही है 199 या 499, $200-500 वन टाइम फीस है, आपका फायदा हाथी जितना, हमारा फायदा चीटी जितना, हमारी नजर हमारी गुल्लक पे है, आपकी फंडिंग पे नहीं है। इसलिए हम इतने लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, और जो लोग हमें सुनते हैं आते हैं ऑफिस रिटर्न हो जाते हैं, जिनको पता है इसके बारे में, जो पहले से, और जो लोग कोर्स कर रहे हैं मानेंगे, दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तीसरा कोर्स करके फंडिंग ले जा रहे हैं, और जो रह गए बिल्कुल रह गए, तो कोई मीठी बातें नहीं है इसमें। ऑफिस हमारा प्रॉपर है, 218 फुट बुलेवर्ड पे, हर अंडर डेरी पे आप आए, 7 से 8 बंदे काम कर रहे हैं। जब आपकी गवर्नमेंट, आप मान के चले, LGBT कम्युनिटी को 100 मिलियन देती है, ऊपर से $7 मिलियन तो इसलिए देती है जो प्राइड परेड होती है उसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के लिए, सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए 7 मिलियन एक दिन के लिए गवर्नमेंट देती है, तब तो आपको हैरानी नहीं होती है जो गवर्नमेंट आप पे स्पेंड कर रही है और वो भी एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट रूल चेंज करके खत्म कर रही है ग्रांट को, तब आपको लगता है भाई गवर्नमेंट ग्रांट क्यों दे रही है। तो इसलिए पीछे ना रहे, हमारी फीस तो बाद में देनी है, आपने अपनी ईमानदारी से, जो कि आपकी ईमानदारी चेक हो रही है हमारी नहीं हो रही, हमने पहले फीस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है एंड टू एंड सब कुछ, कोई हम पे उंगली ना उठा पाए। तो इसलिए कॉल करें, नंबर नोट करें 437-264-3175, 437-264-3175, उन्हें कॉल करो, एस्टीमेट लो 437-264-3175, 437-264-3175। पीछे ना रहो, सिर्फ हफ्ता रह गया, ग्रांट बंद है, उसके बाद मेरे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये नहीं मैं आज सेल लगा रहा हूँ फिर से सेल लगा दूंगा, ना ना ना, नंबर नोट करें 437-264-3175, 437-264-3175, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, 437-264-3175, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 437-264-3175, 437-264-3175 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਾਸ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: जी बस साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, कोई सेटिंग नहीं होती इस काम में, कोई गवर्नमेंट फंडिंग है, बैंक नहीं कर रहा, बैंक को पागल नहीं बनाना डॉक्यूमेंट बना के, इस काम में साफ काम है, जितनी इनकम कम है कोई कॉल करें क्योंकि सेटिंग नहीं है, राइट? तो नो कमीशन, नो सेटिंग, नो अप्रोच, साफ काम साफ तरीके से 437-264-3175 फंडिंग हासिल करें, 30 से $100,000 मेजर इज

0: इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप फेस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।
2: A to Z किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन। लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 4167207073 9057207073 ते कॉल कर सकदे हो।
3: ड्राइवर ने अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
4: कॉल करो 20 साल दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473031001
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
5: आज दे समय विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां, अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोविंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओह है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान, दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोविंद सरवर स्कूल। गोविंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तों ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करन लई संपर्क करो 9054586222।
6: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
4: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स, जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
4: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 6473031001
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
7: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
3: 32-55-80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं, प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होंदा
2: तिनु इधर ते यकीन नहीं होंदा तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तो हदे घर विच इलेक्ट्रिक जे ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओ ते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बार कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: तिनु ए सब किवें पता
1: क्योंकि मैं भी पिछले साल ए लगवाया है
2: अच्छा ओ वेबसाइट ते नाम की दस्सी सी
1: सेव ऑन एनर्जी.ca/eap

0: culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: 16-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मैंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मैंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मैंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vichon, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, Nepal de vichon, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Earth.
5: Aaj
6: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
5: ਆਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
6: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
7: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਰ
6: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 years ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
8: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
6: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: मित्रां दे जंक्शन ते,
12: ओ केड़े जंक्शन ते?
13: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
11: रात लगियां महफलां रे,
13: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM, ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040, 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
14: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: बिल्कुल जी, एक बार फिर सारे लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और मोना जी, एक जेडी जी थोड़ी जी गलबात दोबारा तेरे नाल जेडी जी करते हैं। माइक प्लीज ऑन कर दियो जी। बिल्कुल जी, मोना जी दे, ओके जी, बिल्कुल। सो मोना जी, जिथे कि अपन लाइफ इंश्योरेंस के बारे गलबात करते हों कि जी ठीक है जी, किसी ने कोई मेडिकल जेड़ा जी इशू आ गया है, सो और बाद चो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, वह किदा जेड़ी जी इंश्योरेंस करा सकते हैं?
2: जदों भी किसी तरह के मेडिकल इशूज आ जाते हैं, जिवें कि कह लो कि कोई डायबिटीज है, डिप्रेशन है, कोई हार्ट रिलेटिड इशूज ने, कोई कैंसर की प्रॉब्लम आ चुकी हैगी है, नो डाउट मेडिकल एडवांसमेंट के नाल परसन ठीक तो जरूर हो जाते हैं। कोई 4-6 महीने लगता है, किसी नूं साल 2 साल लग जाते हैं, पर उस तो बाद डेफिनेटली यह जरूर हैगा कि स्टैंडर्ड मार्केट के लाइफ इंश्योरेंस करवानी हो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस टाइम से तुहाडे कोल इक्को ऑप्शन हुंदी है, नॉन मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस। सो मैं हमेशा ही कहनी है कि जो भी तुसी एक एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर दे नाल डील कर दे हो, डेफिनेटली सानू पता हुंदा कि किन्ने साल होए ने थोड़ी जदों सिचुएशन नू सारी डिटेल्स लैंदे हैगे आ, तां किन्ने सालां तों बाद थोनू कित्थे किहड़ी कंपनी एलिजिबिलिटी दे सकदी हैगी आ। सो उस तरीके दे नाल थोड़ी एप्लीकेशन पवाई जांदी है, क्योंकि मैं एक दो बार देखिया हैगा कि कई बार किसी नू हेल्थ इशू आए, उन्होंने जस्ट एडवाइजर ने कह दिता कि हांजी एप्लीकेशन कर दिंदे आ, दैन दे गॉट डिक्लाइंड ओवर देयर। सो इस करके उहदे नाल थोड़े मेडिकल इनफॉर्मेशन ब्यूरो ते थोड़े रैकर्ड के उ सारिया रिपोर्ट चढ़ जाती हों कि बार डिकलाइन हो कि बार रेटिड होया। सो इसे करके जरूरी है एक्सपीरियंसड एडवाइजर डील करो, तीडी पूरी सिचुएशन देख के गाइड किया जाता है कि किन्ने साल बाद कि अमाउंट की कवरेज मिल सकती है, कि इंश्योरेंस कंपनी आप डील कर सकते होंगे। सो साडे लिसनर्स ऐदा की कोई भी सिचुएशन आ चुकी, किसी भी तरह के हैल्थ इशूज आ चुके ने, लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, जिंद कि चाहे अपनी मोरगेज इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करना है, स्टेट प्लानिंग करनी हैगी है, फाइनल एक्सपेंस कवरेज सीनियर्स के लिए, कोई भी परसन 85 दी एज तो घट हैगी उम्र, तो जरूर थोनो फ्यूनरल कॉस्ट एक्सपेंस के बारे कोई भी डिटेल चाहिए हो, जरूर मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू एट 416-509-1509। इवन की किसी तरह के हेल्थ इशूज आ चुके ने, नॉन मेडिकल क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो नॉन मेडिकल क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज भी अवेलेबल ने। इंश्योरेंस फॉर यू के ऑफिस भी विजिट कर सकते हो जी, 9280 गोरवे ड्राइव यूनिट C110। या थानू कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स के बारे कोई जानकारी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टेट प्लानिंग बारे कोई कंसर्न हैगा, या फिर कॉर्पोरेट ओन्ड पॉलिसीज करवाना चाहते हैं, 416-509-1509। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नाल दस दिए कि अज का प्रोग्राम पिज्जा डिपो ने और स्पॉन्सर किया सीगा। पिज्जा डिपो दी काफी लोकेशन थोड़े आस पास ने, पिज्जा खाना चाहते हो, विंग्स खाने चाहते हो, और तुसी जां पिज्जे दी फ्रेंचाइज लैनी चाहते हो, तो भी तुसी जिहड़ा हैगा पिज्जा डिपो डॉट सी ए चले जाओ, या फिर तुसी साडी टीम जानी कि नंबर 416-881-7070 ते गलबात कर सकते हो जी। ते अज दा प्रोग्राम जिथे टिक्का जंक्शन दे सुभना वी सी पेश कीता, रदरफोर्ड ते क्वीन दे कॉर्नर ते टिक्का जंक्शन है, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे ही स्पॉन्सरां दा धन्यवाद है। और अज थोड़ी जी तुहानू वी लिसनर नूं टेक्निकल प्रॉब्लम दे विचों साडे लंघना पिया स्टेशन तो, क्योंकि वैदर करके कह लिए जां किवें, ते माफी चाहुंदे आ, ते रब सारे नूं ठीक ठाक रखे, ते इसे तरह हुण तुसी जुड़े रहना। राजवीर जी भी रेडी आ थोड़े लिए प्रोग्राम लैके, साढ़े ने कोई गलबात कर ली आ, 905-799-0999 905-799-0999। चलिए जी,
1: बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारे दा जी।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे मुर्दबारे बाय प्लाजे के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई।
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
4: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी
5: बस इन्नी गल।

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: Kito Hanu electrician din lor hai? Sanu high-risk electrical te call karo. High-risk kyo? क्योंकि साड़े को लाइसेंस नहीं है तो इसी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेते जाने कि तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साड़ा काम कितना को सुरक्षित या कानूनी है पर एक गल पक्की है कि जदों ही असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असीं वादा करते हैं कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
2: अपने परिवार की रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो और यकीनी बनाओ कि ईएसए परमिट हासिल करन होर जानने लई highlicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
3: कमाल का कैच था यार यकीन ही नहीं आ रहा
4: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है
3: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं
4: तुम्हें ये सब कैसे पता
3: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है
4: अच्छा वो क्या वेबसाइट थी
3: saveonenergy.ca/eap
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
6: 1-3-2-2-6-7-9-9-9-2-5 6-9-6-4-7-9-9-2-5